माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना, माशा अल्लाह कहना तो माना।

या तो कीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है।

0: एक दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: हा हा हा छोड़ दो आजकल, जमाना क्या कहेगा।
0: हा हा हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा,
1: जमाना क्या कहेगा।
2: Those selections there are taken from other movie Paying Guests, a movie that starred Devanand and Newton. We go into the 60s now. 1962, Manoj Kumar and Mala Sinha starred in Haliyali Ud Rasta. Here are selections from that movie.

0: क्या बात करो?
1: कुछ भी।
0: रवि, मुझे बहुत डर लगता है, जाने हमारा क्या होगा।
1: मीना, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना?
0: ये भी कोई पूछने की बात है?
1: तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं तुमसे। बाकी सब किस्मत पर छोड़ दो।